0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थिति

0: स्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोता, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण
1: जी।
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी? तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
1: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से।
0: खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता
1: जी।
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजीन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े
1: जी।
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
1: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशुतोष, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी
1: जी।
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी
1: जी।
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी
1: जी।
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है
0: जी। ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं
1: जी।
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत, और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Deeksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Deeksha, Deeksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई।

0: दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार-बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
1: अरे उठो, अरे उठो, उठो, हाँ, अरे उठो,
2: आय उठो, उठो, उठो,
1: अरे उठो,
3: बैग बैग कैप पैक, बैग बैग।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
1: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
4: अच्छा।
1: परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा।

0: पर जाकर थे। मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ।
0: लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
0: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तू? ऐसे
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने

0: इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।